सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे वावण हारे किते तेरे राग परी स्यों कही है किते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चेत गोपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उप

गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसा।

नसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यों तिस भावै।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास।

तरया सिर सिर रिजिक संबाहे ठाकुर काहे मान पाओ करया। उडे उड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिदान।

पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल कर।

पढ़या मूरख मुगधा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आसा महला पांजवा भई।

उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवकोन सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काटो काटो के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशानै काट काट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आल।

तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं।

उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे।

शून्यात् सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक पिता एक से हम बार तो मेरा गृह सब ना का माँ प्यो आप है आपे सार करे पाई ओ वाहेगुरु परमेश्वर कैसा है कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे हर जड़े जड़े दे वाहेगुरु परमेश्वर आप वस रहा है ओई प्रतपालना कर रहा है साढ़े सौ इनिक सेवा प्रवान कनी हुई पुलना चुका दिखी मकनी अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग्यानी गुरमेल सिंह जी उन्होंने पासो चल रही तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दसारो फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

बच्चा पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके दे संतर भव पथके पेकदारी दूजे पाए नाउ कदे न पायन दुख लागत पारी मूर्ख अंधे तै गुण सेव माया के व्यवहारी अंदर कपट उधर परन कहताई पाठ पढ़े गावारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हों मैं विचों मारी नानक पढ़ना गुनना यो इक नाव है बूझे को बिचारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हों मैं विचों मारी नानक पढ़ना गुनना इक नाव है

0: कोई।
1: बोलो जी, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समर के गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरय घर नौ निदावे ताए सब थाई होए साहे दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साहे दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी के मुबारक चरणा कमला विच अरदास बेनती है। आप जी के भाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया महाराज जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जिया ने खुले दर्शन दार दे के निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी की सेवा संभाल सोहला साहब जी की बाणी का जाप होया सेवा करदया बाणी पढ़दया बेअंत फुल्लां हो गई बख्श लेना महाराज जी। बेअंत संगतां आप जी के चरणा दियां हाजरियां भर रही ने महाराज जी सब दी हाजरी कबूल करो खुशियां रहमतां बरकतां नाम नितनेम दियां दातां नाल झोली भर के भेजना महाराज जी। रहण आई है सुखमई शांतमई तुहाडी याद विच बतीत होवे दाता जी। सेवादार हाजर ने अपने सेवकां नूं चढ़दी कला आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान हो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का

अहनिश सहज सुभाई दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जा हो सिपत समि नूर अरसों पुरसों तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म सज्जन सच्चा पात सा

कै सिमरन दूख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीरथ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दर गह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागौ पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै।

नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वैत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै। जेहु मार गेहु जाते केला तै हर नाम संग होत सुरेला। ऐसा दामन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जप तह पार पराही। अनिक बिघन जह आए शृंगार हर का नाम तत्काल उधार। अनिक जोन जन्मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम। हाउ मैला मल कबू न तूवै हर का नाम कोट पाप खूवै। सा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध कै संग। जिह मार के गने जाहि न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैडै मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा।

तह नानक हर हर अमृत बरकै। भगत जना की बरत नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जनकूट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साधु कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन

खजीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग कीते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विडभागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोई श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल पूज सुनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सुख ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगुण त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कराती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास तपिसर थीवै अगन माहे होमत प्राण कनिकसु है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै ताओ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कचनाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्भ गुमान न मन ते उठै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टरै जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध कहा होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत से आनप जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कूट उपाव दरगह नहीं सिजै छूट सनाही हो पयाल मुहि व्यापै माया जाल अवर करतु सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिन नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै।

सगल कटा कौ देव दान कर्ण करावन हार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम है उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै।

पदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुआर सिगारिया गर्भगन में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सहन मुख पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दोख मूढ़ व्यापे नानक काट लियो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावै जूठा कुरसत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर गैमान तिसै बिसारै मुग्ध अजान सदा सदाय भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग हुए अंधकूप में पत विकराल नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेगंतर मलमाया छप सुनाहि कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसी तरह अथाहा जाकै अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह ले ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिए तो समझै पूरा कहा बिशन पद गावै गुंग जतन करै ताओ भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ करमानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पहे अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही

नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिरले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से

0: नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान का पले लाई मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती यस्तु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या त्रुमु अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजनन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार कौता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन भूजे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरति साकत की आरजा साच बिना कहूत सूचा बिरता नाम बिना तन अंद मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृता बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु परबीन बाहर भेख न काऊ पी नवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमाने आप है आप आव करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा उपाव से आन सगल ते रहत सब कस जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिसले लड़लाए थान थनंतर है सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंग मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी ये प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे ये प्रसाद सुगंध तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है ये प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर ये प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दरगह मान पावै नानक पद चेती कर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मुलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सत सहत्याई तिसहत्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ बैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा चितारी जे प्रसाद तिर सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तिर निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्याग और कतला गो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रिमन मेरे तू ता स्योरा जी प्रसा सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातु तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ सलोक अगम अगात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना किए चर्च कथाष्टपदि साधक संग खूजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग बटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुज्जै प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वरनै कौन पुरानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा समानी साधक संग गुचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब कीरे साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महा पुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होता पू साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै तान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तहोत निहाल साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साधरित बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै ब्रह्मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जानै जेता सुनै तेता बख्यानै साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते उच्ची साध की शोभा मूछ ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कस बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो वसुदा को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगाश जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारै जो अंतरनाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रस न परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध के चैर संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बास न मन ते टर, इंद्री चित पंच तोक ते रैत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोजी सुपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नि कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू बल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै अवरह नाम जपावै, नानक को वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै, सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तने अर्पै विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रभुतै, राम नाम आत्म सोधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै, वेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सुखम मैं जानै स्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत हुए, सास पावै जिन कोई, कर कृपा अंतरूर धारै, पस प्रेत मूत पात्र को तारै, सर्व लोक का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कि तै न पाई है धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुख सोग कहावै, तैसा अर्क तैसा सोग, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा मृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताय साई जुगत, नानक उपुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सबल कले ठाऊ, जित जित का राखै तैसा ते नाउ, आपे करन करावण जोग, प्रभावै सोई पुन होग, पसर आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मादे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहार, श्लोक उस्तुत करै अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु विदनक प्रकार, स्पदी कई कोट हुए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कवका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लाभ होते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पात्र वृख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगास, सबते नीरह सबूते दूर, नानक अवलिप त्रिहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरसुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बोजूनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट पालै तक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आपसु प्रसन्नो, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसर पासार, सदा सदय के कंकार, कई कोट किन्ने बहुपात, प्रभ ते हुए ब्रह्मा ही समाता, कंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हुवता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सुदा निहार है को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पैसा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्मरा सुख सह सुमावै, अपने जन का साथ साथ सुमारे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक किस बलिहार नै जल तन मही अल सोएष्ट पदी, करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग, किन महताप उथापन हार, अंत नहीं किछ पार अवारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाकै, प्रभावै तां पथ सुधारै, आप करै अपन विचारै, दुआ सिरै काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ हुए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजान बिख्या मैं रचै, जे जानता अपना बचै, परमे भुला दै दिस्तावै, निमक मैं चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, आका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गने जगदी जीव, पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बुलाई, इसका बनाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई पंथियो, कबू ऊच नीच मैं बसै, कबू सोग हर करंग हसै, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकाश बयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबू नृत्य करै बहुपात, कबू सोए रह दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए वह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अप कीर्त में आवै, कबू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवही रह, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू नून धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिर साधिक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, निक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो सुहागी दिखावै, जो प्रभ पावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई हुए, नानक दूजा वर न कोए, कबू सात संगत पावे उस स्थान ते बाहर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अस्तपति जिसके अंतराज महान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्ठा का जंत आपसको करवंत कहावै जन मरै वो जुन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता कै सुख पावै धनवंता होए क्या को धनवंता होए कर गर्भावै जिन समान का संग न जावै बोलस कर्मानुक ऊपर करे आस फल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तुझ करे कुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटै महान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर स्वरूप फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहा वै तुसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोई जावे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तार है को बैरी मी तब लग नीचे ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटीला कोटा तावै तृप्त न आवै माया पाचै पावै अनिक भोग बिकिया की करै नै तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ बिरथे सुभ का जय नाम रंग सर्व सुख होए बिटभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ का विचार जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझै देखै करै विवेक आपहि कापहि अनेक मरण बिन सया वै न जाए नान सद ही रहा समाया पवति सह समझे आप अपे रचिय सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु सकाउ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एकै सोए अपने चल ताप करने हार कौत करै रंग आपार मन मैं मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने विज्ञानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट चुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्टपति संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हथे को रखै न कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी काथा को नाहि नानक संत पावै तो भीगत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक कंटक न पाई संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत की निंदक को सर्व रोग संत की निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नान संत पावे तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित्र संत के दुखी कौ डान ला गए संत के दुखी कौ सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जिन में मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कौ ना ही ठाउ नानक संत पावै तां ले मिलाई संत का दुखी अदबीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुंचै संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यो सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किछ नाहि अपन बीजा पे ही खाहि संत के दुखी कवर न रखन हार, नानक संत भावे तां लै उभार, संत का दुखियां बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टै केला, ज्यों बुआड़ तिलखीत माहिं दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योति स्वभाव है सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सो जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रिष्ठ कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए पै, किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब गढ़ तिस्क्यो करने हार, सदा सदा तिस्को नमस्कार, गर्भ की उस्तत करो दिन रात, सहत्याहु सास ग्रास, सब कछ वर्त है तिस्का किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपनाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक तजो सियान, सुरजन हो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, पदी मानु की टेक वृत्ति, सब जान देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रह घाय, बौर न तृष्णा लग गया, मार रखे कुआ, मानु कह किछ नाही हाथ, इसका हुकुम भू सुगोय, तिसका नाम रखंड पुरोय, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मत्था, विडभागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह बिचारो, से तन मंत गनि संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानु तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, वंदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिचन की आसा, तिसकी कट्टी अजम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप सुमाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाता सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुकुम सो ये सूल, न के जन्मे न किच मरे, अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचता पुथाप, अविनाशी नाही किच कांड, धारण धारे हो ब्रह्मांड, अल कपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिनमंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिष्णु कृपा करह बिट भागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किच करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए हुवै सो होए, करने हर पछानै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजी तिस माय समाय, सुख निदान उन्होंन बने आए, आपस को आप तीनो मानो, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार अष्टपदी, टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिस प्राणी लोचै कोय, तिस बिना ही तेरा किस काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत हो ना ही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, धनवंता हो क्या को गर्वै, जा सब किस तिसका दिया दरबै, असुरा जे को कहा वै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को हुए वह दाता, तिस दिन हार जाने का वाह, जिस गुर प्रसाद उठै हो रोग, नानक सो जन सदा रोग, जो मंदिर को थामै थम, त्यों गुर का सद मन अस्थमन, ज्यो पाखा नाव चढ़ तरह प्राणी, गुरु चरण लगत निष्ठरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास, जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूहूर नानक की हर लोचापूर मन मूर्ख काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया भाई है दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरा संग लपटरे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिर दे माहे नानक पद सिद्धी कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लिहो मन मूल राम नाम हृदय में तूल लाद के संत संचाल अवर त्याग किया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजलर दर गै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सत बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर कर हो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालनहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस जिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिस जने आवे हर प्रवचित भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृ सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रंजन सच कर जाता नानक सोजन सत समाता श्लोक रूप नरेक न रंग किच त्रैगुण ते प्रभ भिन्न तिस हे बुझाए नानका जिस हो वै सुप्रसन्न अष्टपदी अवनाशी प्रमन मै राख मानुक की तु प्री त्याग तिस्ते पर नाही किच कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे ताना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाऊ नानक मन हो अनराव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नित्र पूर तिसका मंत्र न जाने हो रण द्रु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए कर ताके राज में राज जोग में जोगी तप में तपीश्वर ग्रिष्ट में भोगी त्याई त्याई भगत है सुख पाया नानक तिस पुर का किन्त न पाया जा की लीला कीमत नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाय जन्म मरे फिरिया वह जाय ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे किनवाए पूरे अपूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जप जप जीव है नानक हर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया स्वभवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा के असत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समाय समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दय प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार वरण बुझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योति सुभाव है सो वरतिया विस्मन विस्म भय विस्मा जिन बूझा तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे जाते दुख कट न हार जाते संग तरह संसार जन का सेवक सो वट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोका सच उगा सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण कारी ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸੁਨਤਾ, ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸ ਮਾਇ ਲਈ ਬਸ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਭਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੂਚ ਤੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕੱਟ ਤਾਪ, ਤਾਕੂ ਰੱਖ ਦਿਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਭਾਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰਨ ਰੱਖੈ ਵਰਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰੱਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੀ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲਕ ਵਿਡਾਨੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕੇ ਚਵਰ ਨਾਹੀ ਦਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਾਨਾ ਮੂਹ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਾਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸੁਦਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੀਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਮ ਕਹਿ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਕਾਨੂ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿਕ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਹਾਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ, ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਗੁਰ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਗੁਦਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਵਟ ਬਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸੇਕੀ ਗੁਰ ਗੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵ ਕੁਜੂ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇ ਸਹੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆਵੇ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਬੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਸੋ ਸੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਣਕ ਬਾਤ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਬੰਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਗੁਣ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ, ਏਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੇ ਪਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਲੈ ਨ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਕੈਸਾ ਗੁਰ ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, सफल दर्शन पेखत पनीत पर सचरण गणर मरीत पेट संग राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दर्ग गवे सुन कर बचन कर्ण अघरने मन संतोख आत्मने पूरा गुरु आख्यो जा का मंत्र अमृत देखियो संत गुण बेअंत ईत नहीं पाए ना जिस पावे ते लय मिलाए जे बा एक उत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पवित प्राणी अगम्य गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत तिने न पाई अनक पवित बंधनित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सदगुरु अपने नान जिस प्रसाद ऐ सफल अपने इवरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए ओस पुर का ना ही करे विनाश जाके मन पलट के गुणता आठ पैर हर का नाम ले सच दे शिव को दे वो माया के संग लेप मन में राखे हर हरेक अंधकार दी प्रकाशे नान परम दुख चैतना से तौत मैं ठंड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण से पौ चूका निरपोहे बसे सगल ब्याज मानते खन से जिसका सातन कृपा तारी सा संग जप नाम राय थित पाई चूके परम गवन सुन नानक हरा जसवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार दिन सगल मोई आपने चरित प्राप बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्वधरंतर एको सोए ओत ओत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखया सगले शार हर हर नाम कमावना नानक्यो तनसार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप स्वामीत बसारो चरण कवण प्रिदमे उतारो कर्ण कारण सो प्रस्मृत दृढ़ कर गौ नाम रवत ए तन संचो ओ भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करे पढ़ी करने सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावे रोग न जाए और रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वधान में हर नाम निधान जप नानक भर के प्रमाण मन प्रभु दो हर कह नाए आवेठाए ताको बिघन अलागे कोए जा कर बसे सोए काल साती ठांडा नाओ सिमर सिमर सस पाओ ओ बिन से पूर्ण यासु भगत पाए आत्मृकाश तित कर जाए बसे अबनासी कौ नान काटी जंपासी तात विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर सिमर प्राण उदार अनक पाव न छूटन हारे सिमर सास वीर विचारी हर की भगत करो मन लाए मन बचत नान पल पाए सांगन चालस तेरे तना तू ख्याल पटावे मूर्ख मना सुत मीत टमर बनता इनते कहो तुम कौन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार आसक्ति रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए जिस बुझे न बिगड़ना नाम विसार नानक पितरना गुर की मातू ले याने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हार उचित चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ संत कहे प्रेत कर पाओ सार पूत सतर को नाओ सहज सपाई नान गुण गाओ गुण गावत त्रिउतर समैल बिलस जाए होमे बिख पैर ओहे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड सियान सगली मना सास पावे सचना हर पूंजी सच करो व्यवहार ई हा सुख दर्गे जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मनाए एक के गुण गौ अनंत मंत्र जाप एक पवन एको एक एक आप पूर्ण पूर्ण प्रव्याप अनक विस्तार एक ती पहे एक राष्ट्र गए मन तन अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलो फिर तो फिर प्रव आया परया तो सरनाई
0: नानक
1: की प्रभ बेनती अपनी भक्ति ला
0: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम

सास प्रभु तुम्हें ते आऊं, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु की नित नीत। एको टेको आधार, नानक मांग नाम प्रसार, प्रभु की दृष्ट महासुख हुए, हर रस पावे बिरला कोई, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाउ साधु कै संग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन निवलाग, बिडभागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रत्ते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेव किनु सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी श्रद्धा सपूरी, रब रया सत्संग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाई, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे का हाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे की आ जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुर पूरै तथे है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो हो एहु काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाई तरिय संसार, बिन भक्ति तन हो सिचार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुखा होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तने अंतर ही सुवाओ, नेत्र उपेख दर सुख हुए, मन बिकसै साध चरण तुहे, भक्त जना कै मंथन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्ति जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाई लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सु करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक परगास, लोक सार गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी। जब अकार कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हरक सो कहो किसे व्यापत, जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम, अपन खेला वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा,

तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अभिगत अगोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर गा दे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, आपन आप आप ही अचर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भू कवन तृप्तावै, करन करावन करने हार, नान करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभापन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कलाया पै परवीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन, जब अपने आप आपुरता है, तो सगन अपसगन कहा विचार, ये अपन ऊच अपन आप नीरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जान हुआ, जय चल चेद भेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया, आपस को आपहया देश, त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय कहे एक भगवंता, तै कौन चिंत किस लागे चिंता, ये अपना पाप त्यारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपह पहुँचा, जया प्रच्यो परपंचकार, त्यो गुण मह किन्नो विस्तार, पाप उनते पही कहावत, को नरक को स्वर्ग वंचावत, आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह परम पै पहार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान, अपन खेल आप कर दिखे, खेल संकोचै तो नानक कै, जय अभिगत भगत है आप।

सुति सहत आत, जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक इक जानिया, जन लागा हरि कै नाए, किसकी आस न बिरथी जाए, सेवक सेवा बनियाई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पहे निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर, हे लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभया पह मेले, साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गावो पर परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुआओ, आठ पहर प्रपिखो नीरा, मिटे ज्ञान बिनसय अंधेरा, सुनुपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक फल पावहु, हलत पलत द्वय लिहो सुवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाहे, जिसते दूर कहा को जाए, उबरै रख नहार ते आहे, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै, जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दूख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार, सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, सा संग नानक हर त्याया, श्लोक 11।

सुअस्तपदि संत सागंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव निदम मृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनात कह न जाये चर्च विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रहा भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाऊ गुर प्रसाद नानक सुख पाऊ वेद प्राण सिमृत मैं देख सस्यर सूर नक्षत्र मैं एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुन अमूल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतर गाचिस आप जनाए नानक तिस जनिया बुझाए सर्वभूतावरतारा सर्व नैन अपेखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जसा भी सुना आवण जान केल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कै मद लिप तो रह जो कुछ कहना सुवापे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावै ता ले समाए स्ते हुए सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा भला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच उत्पोत अपन संगराज ताकि गत मित कही न जाए दूसर हुए ता सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस परसा सब जगत राया जन आवन काय है सुआउ जन कै समचित आवै नाउ आप मुकत मुकत करै संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोहत रंग संत जना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो सा संग गुण सागर तरहो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जीव गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन
अमलीक लाल हिरतन सुनत कमावत होत उतार आप तरह लुक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कहमत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कुए सब जुग मै ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपरा सा संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुट्टे जाके मस्त कर्म प्रपाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए परी तिस जन आवे हर प्रवचीत जन्म मरणता का दुख निवार है दुर्लभ दे तत्काल उधार है निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माही समानी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भूख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे ता एक ना चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहै ना कोए

गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंत्र खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार, आखै है मंगै है देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार, मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर, नानक एवै जानियै सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निधान, गावियै सुनियै मन रखियै पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई, जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी, जे ती सिरठ उपाई, वेखा विण कर्मा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोए करे, सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ, सुना है धरत धवल आकाश, सुना है दीप लो पाताल, सुना है पोहे न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, सुना है ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुना है मुख साला हनुमंद, सुना है जोग जुगत तन भेद, सुना है शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सात संतोख ज्ञान, सुना है आठ साठ का इसनान, सुना है पढ़ पढ़ पावै मान, सुना है लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सरा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावै राह, सुना है हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछै पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल पवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पत सिउं प्रगट जाए, मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती सन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाणै मन कोए, मन्नै पावह मुख दुआर, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारी गुर सिख, मन्नै नानक पवह न भिखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाणै मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान,
जे को कह करै विचार करते कह करणै नाहीं सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिसके पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाणै कोय लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाणै कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तो दुपावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लेव लाए पार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तो दुपावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भाख पुकाए असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तो दुपावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तो दुपावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देहे पाणी धोतै उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए सो अस्त आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुती माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपाउ जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असुलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लिखै होए विनाश नानक वड़ा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनहु न विसुरा है
अंत न सकती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुणन न अंत, अंत न जापै किया मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाउ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ, एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, किते मंगा है जोद अपार, किते अगणत नहीं विचार, किते खप टुटै वेकार, किते लै लै मुकर पाहे, किते मूर्ख खाही खाहे, किते दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे दे, आख है से पे केई के, जिसनु बख से सिफत सला, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवै है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बखशीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण, आख है ब्रह्मे आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नार मुन जन सेव, केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे हे ता आख न सक है केई के, जे वड पावै ते वड होए, नानक जाणै साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावार गावार, सो दर केहा सो कर केहा, चित बह सर्ब संभाले वाजे नाद, अनेक असंखा केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कहियन, केते गावण हारे, गावै तुहनो पाउण पाणी बह संत्र, गावै राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नर कीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन, सुर गाव मश पयाले, गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले, गावै जोद महाबल सूरा, गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावै जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा साच, साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भगती कर कर जिन सी, माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई कर सी, हुक्म ना करना जाई, सो पात साहौ साहा पात साहेब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की कर है बेपूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सद जाकी, रिद सिद अवरा साद, संजोग विजोग दोए, कार चलावह है
ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख होहे लख हो वै लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। एतरा हे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस। सुन गला आकाश कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती था परखी धर्म साल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान। कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते बरमे घाड़ पकड़िया रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देवदानव मुन केते केते रतन सुमुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कूड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथिया न जाहे जे को कहे पिछै पछोताए। तिथै घड़िया सुरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भार पूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरै न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा है ता अंत ना अंत। तिथै लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत ते तटाल। घड़ी शब्द सच्ची टकसाल। जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत। चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिने नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिने नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं। शपाय शांत तुआ प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात। नहन जेहे रूप रंग अर रेख। भेख को कह न सकत केहे।
अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित उज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेते नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकहते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं तिरमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तिरवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं आरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमज्जबे नमस्तस्त अज्जबे अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निरबामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं अपेव नमस्तं अजनमे नमस्तं सुबनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अभरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सात अबन्दे नमस्तं नरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अजंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति बेभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं ईशनानं
नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे आरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा विरुद्ध करता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदिया नामं अकामं समस्तु पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात शंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को कुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन पुर अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत कौ फिर एक देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र वक्र फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चाउ दाह के बिखै जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सुयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म तामसो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार शांत त्वा प्रसाद गुणगण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनाश आजान बाहु साहान साहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगण उदार मुन गन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मेत गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ्य चाचरी शांत त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे पूजंग प्रयात शंद
चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्राय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय प्रतिशय आदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत त्वा प्रसाद कथते के अशेज देश के अभिज पेश के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के आदित सुक के अवतूत वर्ण के बेभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपौ अनुपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हाक के पाको बेऐब है के गैबुल गैब है के अपुल गुनाह है शक शाह नशाह है के कारण उपनिंद है के रोजी दहंद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमंग फाही में के आकल अलाम के साहेब कला में के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसला में सलीखत मुदाम में गनीमल सिकस्त ग्रीबुल परसत बिलंदल मकान जमीनल जमान तमीजुल तमाम रजुअल निधान हरीफल अजीम रजाइक यकीन अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खेराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप हैं अशेज हैं अशूत हैं कि नरकं प्रणाश हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैव सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत त्वा प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं
ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਉਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਹਰਾਸ ਉਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗਨਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬ ਉਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ ਉਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸ ਉਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ ਉਲ ਅਪੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਉਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਭਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ, ਅਰਬਰ ਅਗੰਜੋ, ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਂਜੋ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ, ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਅਨ ਸ਼ੇਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾ ਹਉ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਅਨਸ਼ ਜੁਗਾਤ, ਆਜ ਜਿਨਾ ਬਾਤ, ਅਨ ਝਾਂਜ ਗਾਤ, ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ, ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਅਨ ਠਟ ਅਪਾਰ, ਆਡੀਠ ਧਰਮ, ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਅਣ ਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਰੁਣਾ ਲਹਿ ਅਰਕਾ ਲਹਿ, ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਉਭਾਰਨ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ, ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ, ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ, ਸਰਬੰਭਰ ਹੈ, ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਾਸਿਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ, ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈ, ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ, ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਮਕੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ, ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ, ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ, ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਆਰੇ ਗੰਜਨ ਹੈ, ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ, ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ, ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ, ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ, ਅਨਾਦੰਗ ਬੇਬੂਤੇ, ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ, ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ, ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ, ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ, ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ, ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਬੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ, ਅਗੰਜ ਅਭੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ, ਦਯਾਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ, ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ, ਅਗਾ ਅਠਾ ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਅਜੂਨੀ ਅਮੂਨੀ, ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ, ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ, ਅਕਰਮੰਗ ਅਪਰਮੰਗ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ, ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ, ਨ੍ਰਕਾਮੰਗ ਬੇਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ, ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਕ੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਜਾਇਬ ਬੇਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ, ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਕ੍ਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ,
दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। चत्र चक्र वर्ते चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओ घर, जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे ओ मत, को न देखी यत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बेन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पाउन के गौन कौ जात निवारे। भारी पूजान के भूप भली बेद, न्यावत शीस न जात बिचारे। एते भय तो कहा पहे भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे। जीत फिरै सब देश दिसान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत, कौन गनै नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बेन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान, सो संयम नेम अनेक बसेख है। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार हजार क देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है। सुध सिपाह तुरंत दुबाह, सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे। परि गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे।

सो एक देवैया दानव देवने दिन साचर भूत भविख पवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इस नानक जादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पागो ते नर फिर न देह तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा कोसी सनेवायो। को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो। पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूर किरिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करियै। सब बैरन कौ आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ। जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है। हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जू करे हौ रक्षा। राख ले हो मोहे रखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपार। जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो

आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन।

झंडे पुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु, निताणियां दे ताण सतगुरु, नेओटियां दी ओट, नेआसरियां दे आसरा सच्चे पिता, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी, आप जियां दा कोटान कोट शुक्र है पातशाह जी। अमृत वेले तो पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो। आप जियां दी टहल सेवा करदिआं होईआं बेअंत फुलां दी खिमा करनी सतगुरु जी अगे तो सुमत बख्शिश करनी। सतगुरु जी आप जी दे पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहोजे विखे अमृत वेले दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना दे विच सतगुरु जी संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ होए, उपरांत नितनेम दीआं पंजां बाणीआं दे पाठ होए। महाराज जी बाणी पढ़दिआं सुणदिआं सेवा करदिआं विचरदिआं होईआं बेअंत फुलां दी खिमा करनी। बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैणी, बाणी दा फल भाव समुची संगत दे हिरदिआं ते वसाउणा, बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा, सिखी से दुख केसा सवासा संग निभाउणा। पातशाह जी दाराइयां संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां, सब दी हाजरी लेखे लाओ। महाराज जिहड़े जिहड़ियां संगतां ने अमृत वेले तों लै के आप जी दीआं हाजरियां भरियां, तान मन धन दे नाल सेवा कीती, सतगुरु जी गुरमत अनुसार सभनां दीआं भावनावां पूरियां करनियां, आसां मुरादां पूरियां करनियां, परिवारां दे सुख शांति वरतौणे, महाराज जी तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां, मेहर भरिया हथ रखणा। जो संगतां घरां दे विच बैठ के महाराज आप जी दी याद विच जुड़ियां ने तिन्हां दी अरदास, परिवारां विच सुख शांति वरतौणी, नाम दा प्रकाश करना, दुखां दा नाश करना, बच्चियां नूं तंदरुस्ती बख्शिश करनी, बाणी अते बाणी दा प्यार बख्शिश करना, सत संगत दे नाल रलाउणा। महाराज सच्चे पिता जी दाराइयां संगतां सच्चे पातशाह जी सभनां दीआं हाजरियां प्रवान करनियां, दर घर दे टहलियां नूं तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां, तंदरुस्ती बख्शिश करनी, महाराज जी भय अते अदब दे सदका अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने। सतगुरु जी आप जी दीआं बख्शियां होईआं दातां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है। सतगुरु जी आप जी कृपालता करके भोग लाओ जी। भोग लगा शीत प्रसाद साध संग दे रसनी लायक होवे, जो शके सो आप जीआं दा नाम जपे। जिन्हां भंडारें चो रस्तां बस्तां हाजर होईआं भंडारे भरपूर करने, काल कंटक चूर करने, रस्तां दरगाहों भेजणियां। महाराज जी करो कृपा सतगुरु सच्चे पातशाह जी पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो जी। सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां दे मिलिया आप जी का नाम चेते आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पई अकाल की, तबे चलायो पंथ सब से खनका।

निध दुख ना सकै व्यापो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो जो अमृत वेले सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां, तन मन धन दे नाल सेवा कमाई है। सतगुरु जी सभना दियां आसा मुरादां पूरियां करदे हुए अपने पावन चरण कमलां दे नाल इसे तरह सतगुरु जी जोड़ के रख लैण, तां जो मनुखा दे ही सफल हो सके। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन प्रारंभ होणगे। गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी दा हजूरी कीर्तनी जथा आप जिया नूं आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कराउणगे। आप जिया ने कृपालता सहित गुरु की बाणी दे कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करने जी। वाहिगुरु जी का

0: नानक सच के आय न सच जो मर्ज मैं सो कच न कच महला पहला
1: वडी उड़े जा वड्डा ना वडी उड़े जा सच न आओ वडी उड़े आई जन चलथा वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझे सब पाओ वडी उड़े जा पुछना दा तो वडी उड़े जा आपे आप

कुदरत दिशा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण के बांग कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पै

मैं कर्म कमाए, हो मैं बंदना फिर तर जो नी पाए, हो मैं कितो उपजे कित संग में जाए, हो मैं हुक्म है पै कित फिराए, हो मैं दीर्घ

0: सोकर जित सर जाए, सोकर जित सर जाए सोध।
1: गुरु प्यारी साध सिंह जी आवन समा हो रहा अज के मुख वाक के विचार का सत्कार योग गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले आप जी अज के हुक्मनामे की कथा सरवण कराउंगे जी। प्यार सहित सरवण करो, दस रहा पासों हुई भुलां की खिमा बख्शते हुए फतेह की सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: वाहेगुरु

शासन जी बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाचिपाचे दसवें प्रथम भगवती से अमर कहे गुरु नानक लई त्याय हरि अंगद गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कानून आवैसा सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठदार अंतर के घर से बोलो जी वाहे गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन छकिया देख चलाई ते वाहे देख निट किया तेना प्यारा सत्यारा जी कमाई दस अंदर की बोलो जी वाहे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया जड़े आर नजराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की क्या धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग निभाया तिना सिंगा सिंगड़िया भजाइया की कमाई दस अंदर की बोलो जी वाहे गुरु पैजा तख्त गुरुद्वारे दस अंदर की बोलो जी वाहे गुरु प्रित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चिता है जित आवण का सदका सर्व शक होगा जहां जहां गुरु खालसा साहब आज देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु सिखान सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग अटन धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु गुरु जी महाराज पंथ सदा सहाय दरदार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब के होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जे पंथ में छोड़िया गया दर्शन दार तो सेवा संभाल दादा अपनी खालसा जी बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दास दोहे कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे ताने रास ये गीवनवास जी आप जी के चरण कामना दरदास पंजाब ने बख्शिश की है अमृत वेरे प्रकाश मान संकतों दर्शन दर्द के हर दता जी हो बेहद बाणिया के पास एस में रागी सिंह ने अपने चरण आशा की वार्ड कीर्तन किए हैं विद्वान भीर ने अज के नाम कथा चार की कृपा करो वो इं भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदय विशाली कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी चार बार बुद्धि बख्शिश करो कि आज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता ग्राफ चंद देकर त्यार के हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संकत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी बख्श दतार जी आप दी बख्शिया दातों जी लग रहे तुट सवारियां प्रवान करनी आप दे चरणा सेवा करते सारे टहरी संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो अते सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करो गरीब नवाज मेहर करो अमृत वेले तो लैके दाते आई हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दाते ते फुल भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज बख्शिश करो दतार जी खास बंसे कौन एकता स्वाग प्यार जी बख्शिश करके सतुदास बख्शो चरण ना जोड़ो कौन जा प्यार बख्श दतार हर मैदान जवान फतेह बख्श कृपालता करो जी गुरगीब नवाज कृपा करो दूर दुराज कहानी बैठी शर्म कर रही सारी संगत की हाजिर घड़िया लेके लाओ सारा अपने बख्शे की संगत बख्शे ने संगत आपके जाना धनबाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेहद लाई गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा करनी चाहना प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबल करो घट वादता सब संगत शुभकामना सबल पूरी करो जी तार मेहरा तक आओ सेवा प्रवान करो भोला चुका माफी बख्शो पितर गुनामी बैठे उपरांत लड़ी वार सहज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो शुद्ध से पितर सेवा लाने की बात दता रहते कार सवार के चना दरवाजे बनाओ सही प्यारे मेरे जिले बनावता नाम देता है नानक नाम चढ़ी करा तेरे भाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहे

साहिब जी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा

सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजै भाई, सो आत्म तत् विचारी रहाओ। शास्त वेद बकै खड़ो भाई, कर्म करहु संसारी, पाखंड मैल ना चूकई भाई, अंतर मैल विकारी, इन बिद डूबी माकुरी भाई, ऊंढी सिर कै भारी, दुर्मत घणी वेगुती भाई, दूजे भाए खुआई, बिन सतगुर नाम ना पाई है भाई, बिन

खिन पल नाम हृदय वसै भाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, घर पहला ते तुकी

माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता। हौ मैं मार मनसा मन है समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत काम करह।

जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुरु सेवे किने न पाया, मन मुख भौंक मुए बिललाई, आवह जावह ठौर न पावह, दुख में

अनेक कर्म करे अधकाई, वेद पढ़े ते वाद बखान है बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज छूट है गुर सरनाई, जिन हर

गुरमुख कमल प्रगासी है भाई, हृदय हुए प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी दी अपार कृपा रहमत हुई है जो समुची मानवता दे भले वास्ते समुचियां संगतां वालों श्री सहज पाठ कीते जांदे हन गुरु कृपा सदका घरां विच बैठ के गुरु चरणा विच आ करके। सो सतगुरां ने अज भी तरस किया है पावन पवित्र बाणी दे पाठ होए ने। सतगुरु जी कृपा करन समूह संगतां नूं बाणी दा भाव बख्शिश करन समूह परिवारां दे सिरां ते मेहरां भरिया हथ चढ़ दियां कलां बख्शिश करके नवाजन। अपनी बाणी दा प्रताप सतगुरु दतार पिता महाराज समूह परिवारां नूं बख्शिश करके नवाजन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने भुल्लां ना चितारदे फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कैसा सजीव सतबुरा दे रहमत बख्शिश जिस समय दी उड़ीक हर माता पिता जी कर देना है। सतगुरु पातशाह ने बख्शिश कीते दोवां परिवारा उत्ते शुभ आनंद कार्ज सतगुरा दी दर्शाई हुई मर्यादा अनुसार संपूर्ण हुए हैं। सोदरा इस समूह सात संगत दोवां परिवार नूं आनंद कार्ज की लख लख वधाई होए। सतगुरु पातशाह कृपा करन जोड़ी नूं सदा ही अपने चरणा नाल जोड़ के हर खुशियां प्राप्त करन। सो आओ अगला शब्द विवाह हुआ मेरे बाबला गुरमुखी हर पाए।

0: वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरु जी ने कृपा रहमत की है, सुभाग जोड़ी दे आनंद कारज गुरमर्यादा अनुसार होए ने। सो सब तो पहला सुभाग जोड़ी नूं अते उन्हां दे माता पिता नूं साडी स्टाफ वालों गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत मुबारक। सतगुरु जी कृपा करन सुभाग जोड़ी नूं ग्रिस धर्म दियां सारियां खुशियां प्रदान करन। सुभाग जोड़ी नूं बेनती है कि आप जी का ग्रिस्त धर्म अज गुरु हजूरी विच संगत की हजूरी विच प्रारंभ होया है। सो आप जी ने ग्रिस्त धर्म विच प्रवेश किया है, ग्रिस्त दियां जिम्मेवारियां नूं निभाउणा है, सब तो पहला जीवन नूं धार्मिक बनाउणा है, गुरसिक्खी वाला बनाउणा है, परोपकारी बनाउणा है, तो माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, समाज की कम्यूनिटी की सेवा दे लई अपने योगदान जो सतगुरां ने गुण बख्शे हैं उहदे मुताबक करना है, एक दूजे के प्रति सदा वफादार रहना है। यही जीवन दियां सब तो वड्डियां खुशियां हैं। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी यही उपदेश करते हैं। सो आप सारियां नूं बहुत बहुत मुबारक। आओ हुण साडे पास अति सत्कारयोग ज्ञानी अमरजीत सिंह जी जौल, इन्हां दा ढाडी जथा जो एक हफ्ते वास्ते साडे पास आया है, कल एतवार तक उन्हां हाजरियां भरनियां हन। सो साडे सुभाग हन कि उन्हां नूं सुनन दा मौका प्रदान होया है। वह आप जी नूं एक कविता राही सुभाग जोड़ी नूं असीस बख्शन के आप संगत दे चरणां विच बेनती है कि आप जिया ने प्यार सहित ढाडी बारां सरवण करनियां हन जी। सारयां दा तह दिलों धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत का कल जो के जहाज बाणी के बोहे जुगो जोगे अटल, शब्द अवतार वालीए दो जहां, चवर शतर तख्त दे मालक गरीब निवाज पातशाह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद अंदर सजी बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वड भागे हो जो साहिब जी दियां बख्शिशां दे पात्र बने हो। सतगुरां ने अपनी पावन बारगाह विच बैठण दा सुभाग बख्शिया है। समा बड़ा वडभागा है। इस वडभागे समय ने जिथे आपां नूं इह संगत दियां घड़ियां बख्शियां, उथे अज सतगुरु जी ने बख्शिश करके संजोग प्रगट करके दो रूहां दा मेल कीता है, दो परिवारां नूं मिलाया है। आनंद विआह दियां खुशियां बख्शियां ने, सतगुरां दी कृपा वरती है, संजोग प्रगट होए ने। काका श्याम गाला जी अते बेटी जसदीप कौर माणक जी, जिन्हां दे आनंद विआह दियां आपां खुशियां माण रहे हां, सतगुरु जी ने कृपा कीती है। ए माला गाला परिवार अते माणक परिवार जो एक होए ने, सतगुरु जी इन्हां दी सांझ सदीवी बनाई रखण। सत्कारयोग भरत गाला जी अते मालती गाला जी, ए जिहड़ा पुतेता परिवार है, अते रणवीर सिंह जी माणक अते मनप्रीत कौर माणक जी जो तेता परिवार है, तेता ते पुतेता परिवार दोहां परिवारां नूं ढाडी जथे वालों बहुत बहुत मुबारकां ने। आओ गुरु प्यारो इस खुशी दे मौके ते जो साहिब जी ने खुशियां बख्शियां ने इह भागां वालियां नूं मिलदियां ने, जदों सतगुरु जी कृपा कर देण खुशियां दे नाल झोलियां भरदिया करदे ने। सो सतगुरु जी ने दोहां परिवारां नूं खुशियां बख्शियां ने, खुशियां ने गफ्फे बख्शे ने, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे, लखां ही खुशियां सतगुरु जी झोली विच पा देंदे ने। सो आ जिहड़ियां खुशियां मिलियां ने, इहदे संबंध दे विच ढाडी सिंघां दे कोल इक कविता

0: बोले
1: उन मैं बेनती करता हाँ भाई नरेंद्र सिंह जी ते उन अंदर जत्था जी सारे स्टेटे आज ते जो शुक्रवार तो शुरू होके कत्ती राग दरबार निर्धारित रागां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ਇਹ ਅੱਜ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਰਾਗ ਜੋਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 12:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।